बलबल जाओ श्याम सुंदर को अकथ कथा जी की बात सुनी। गुरबाणी दीआं इन्हां पंक्तियां दे विच दस्सिया गया कि उस सोहणे प्रभु तों कुरबान होण नूं दिल करदा है जिस दे सरूप दा बयान करना बहुत औखा है, ते उस परमात्मा दे गुणां दी गल असी अपने गुरु तों सिखीए।

सबे कट रामा बोले, बोले रामा बोले, राम बिना को बोले रे। इंसान दे अंदर उस परम पिता परमात्मा का निवास है। वह परम पिता परमात्मा हर एक इंसान दे अंदर वसदा है। तो परम पिता परमात्मा ही साढ़े अंदरों हर एक शब्द बुलवाउंदा है। और उस परमात्मा तो बिना साड़ी अपनी कोई भी वक्री होंद नहीं है।

नमस्कार, सवेर दे 7 बज चुके ने। एफएम रेनबो ते वेला हो गया एफएम न्यूज हेडलाइंस दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड विच भारतीय भाईचारा दोवां देशां विचकार मजबूत हो रहे संबंधां दा एक महत्वपूर्ण थम्म है। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने कहा है कि लोकराज विच विचारां दा मतभेद होना सुभाविक है, पर संविधान अते लोक भलाई प्रति वचन

तुम सामने हो तो हर मौसम बहार सा लगता है। तुम सामने हो तो हर मौसम बहार सा लगता है। तुम्हारे बिना हर लम्हा बेकार सा लगता है। मोहब्बत की बस यही सबसे खूबसूरत बात है। मोहब्बत की बस यही सबसे खूबसूरत बात है। तुम्हारे साथ हर दिन एक नया त्योहार सा लगता है। तुम्हारे साथ हर दिन एक नया त्योहार सा लगता है। बाकी जो अपने दा साथ होवे तो जिंदगी बेहतरीन, जिंदगी रंगीन लगती है, जिंदगी सोहनी लगती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। FM बैंड 102.7 MHz, FM बैंड 103.6 MHz ते नाल दी नाल न्यूज़ ऑन AIR ऐप वाले दोस्तों नूं प्यार भरी सत श्री अकाल। संडे वाली गुड वाली मॉर्निंग जनाब। अज दी एक सजरी सवेर का आगाज हो चुका है। प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर लैके थोड़ा दोस्त RJ ललित सोनी हाजिर हो चुके हैं जनाब। सो मेरा और थोड़ा साथ बनया रहेगा ठीक 10 बजे तक। बहुत सारिया गल्लां, बहुत सारिया बातां होणगियां अज दी इस संडे वाली खूबसूरत वाली सजरी सवेर दे विच। ठीक 8:30 बजे तक प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर का तुसीं आनंद माणदे रहोगे। 8:30 बजे होणगियां पंजाबी दे विच खबरां, 8:40 ਦੇ ਹੋਏਗਾ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਫ਼ਰ ਅੱਡੀ ਟੱਪਾ, ਔਰ ਫਿਰ 9 ਵਜੇ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧੜਕਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਠੀਕ 9 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੋਇਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੈਕਸਟ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੁਝਾਰਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, अपने किसी गीत दे नाल हाजरी लगा सकते हो प्रोग्राम दिल अपना पंजाबी दे विच। 9855-10-10-27 साडा नंबर रहेगा। सो प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जलंधर दे विच गल्लबात दे नाल नाल गीत संगीत का तड़का भी लगता रहेगा, और थोड़ी रूह नूं मिठी मिठी

सो सब तो पहले गल करांगे पहलवान रुस्तम ए हिंद दारा सिंह के बारे। जी हां, भारत के महान पहलवान अदाकार पंजाब की शान दारा सिंह, जिन्होंने असं अज याद कर रहे हैं। क्योंकि अज ही के दिन उन्हों का जड़ाया निधन होया सी। उन्हों की कहानी सानू दसदी है कि किवें अपनी मेहनत के दम से जड़ाया एक वड्डा मुकाम हासिल किया जा सकता है। जेकर थोड़े सुपने वड्डे होण, जेकर थोड़े हौसले वड्डे होण, तां मंजिलां थोड़े सामने चुक जांदियां ने। और दारा सिंह जी बारे एक गल बहुत मशहूर है कि 500 मुकाबलों के विच उन्होंने जड़ाया फाइट की थी, जिदे विच कोई भी मुकाबला वह हारे नहीं सन। और उन्होंने सिर्फ मुकाबले ही नहीं जीते, उन्होंने करोड़ों नौजवानों के दिल भी जीते सन। और खासकर उन्हों की अदाकारी ने हर किसी को प्रभावित किया, खास करके उन्हों का करैक्टर जड़ा उन्होंने निभाया सी। सीरियल दे विच हनुमान जी का किरदार जड़ा निभाया सी, लोगों के दिलों के विच अज भी वो कितना कितने अपनी जगह बना के बैठा है। पहलवानी के नाल उन्होंने अदाकारी दे विच भी कदम रखिया और नाल दी नाल उन्होंने फिल्म लिखन दे विच भी अपना हाथ अजमाया। सो उन्हां दा जिंदगी उन्हां दी जीवन सानूं इह सिखाउंदा है कि कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं हुंदा। जे मिट्टी नाल रिश्ता बनिया होवे, जे पसीना बहाउण नूं तुसीं तैयार होवो, तां तुसीं अपनी किस्मत की कहानी खुद लिख सकदे हो। और सब तो वड्डी गल है कि ताकत जिहड़ी है सिर्फ बाहां दे विच ही नहीं हुंदी, असली ताकत तुहाडे इरादियां दे विच हुंदी है। जेकर तुहाडे इरादे मजबूत होणगे तां तुसीं जिंदगी दे विच ओह मुकाम हासिल कर सकदे हो जो तुसीं करना चाहते हो, जो मुकाम तुसीं पाउणा चाहते हो। सो इस दे नाल ही एक होर सैलीब्रिटी दी बारे गल करांगा कि एक होर सैलीब्रिटी नूं अज असीं याद कर रहे हां, उस महान कलाकार नूं जिहदा नाम सुणदे ही सिनेमा दे उस गोल्डन एरा दी याद आ जांदी है, जिसने अपनी अदाकारी दे नाल अपनी कलाकारी दे नाल जड़ाया अपने दम ते एक वक्री पहचान बनाई। ओ खलनायक

नमस्कार सवेर दे 9 बज चुके ने एफएम रेनबो ते गला हो गया एफएम न्यूज हेडलाइंस दा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दा इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया अते न्यूजीलैंड दा सफल दौरा मुकम्मल वियतनाम सरकार ने किश्ती हादसे दी जांच दे हुकम दिते ने इस हादसे विच 15 भारतीय सैलानियों दी मौत हो गई सी इलैक्ट्रॉनिक्स अते सूचना टेक्नोलॉजी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत दे विकास दा अगला पड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर इलैक्ट्रॉनिक्स निर्माण अते उन्नत बुनियादी ढांचे ते आधारित होवेगा पंजाब दे जनतक ट्रांसपोर्ट सिलसिले च अत आधुनिक कैमरियां ते जीपीएस सिस्टम नाल लैस 696 नवीं बसां शामिल होणगियां पंजाब भर विच वोटर सूचियां दी विशेष गहन सोध SIR तहत वोटरां दी सहूलत लई सारे वोट केंद्रां ते अज विशेष कैंप लाए जा रहे ने पंजाब विच नशा विरोधी